राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पहा मेरी माए सतगुरु मैं पा सतगुर ता पा सहज सेती मन बजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण।

सब उतर पाप कमाते निर्मल होय कर स्नाना गोरपुरा कीन दाना रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होय कर स्नाना गोरपुरा कीन दाना सब कुशल खेम प्रभ तारे सही सलामत सब थोक उबारी

0: सतकिया
1: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया
0: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया
1: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया
0: बोले इको जे हसब नाले रखिया
1: बोले इको जे हसब नाले रखिया

नानक ने हट खोल लिया सौदा रहनगे नसीबा वाले गुरु प्यारियो गुरु बाबे नानक दा हट जिहड़ा उदों खोलिया होया सी ना 550 साल पहला वो अज भी हट खुला होया पर साडियां नजरां दे कोलों पहचान ना होया जिहड़े इस गुरु नानक दी हट्टी तो सौदा लै गए वो फिर गुरु वर्गे बन गए। बाबा लैणा जी सौदा लैण आए सी गुरु बाबे नानक दी हट्टी तो ते सतगुरु महाराज जी दे दर्शन करके ओ गुरु बाबे दा रूप बन जांदा लैणे तो अंगद बन जांदा। जिन्हां ने सौदा लिया उन्हां ने अपने सिर जाके आरियां दे डाड़ा ते उन्हां ने दस दस के बंद कटवा लै उन्हां ने सने केसां दे कोपरियां उतार लिया जिन्हां ने गुरु बाबे नानक दी सौदा हट्टी तो सौदा लिया। अज सिख सतगुरां दे पासो जदों सौदा लैण जांदा है ना अपनी मर्जी का सौदा भालदा बाबा नानक तेरी मर्जी का नहीं मेरी मर्जी का सौदा। ते सा संग जी भेजे बाबा नानक ना कर दवे भई नहीं सजना इत्थे सच का व्यापार हुंदा सच का सौदा मिलदा ते अज सिख भी इदां दा हो गया कहिंदा बाबा भई होर हट्टी भाल लैने आ इत्थे किते हट्टियां दा घाटा बथेरे ठग तुरे फिरदे हट्टियां ला ला के सिक्खी दे भेस दे विच आपां होर कोई बाबा लभ लैने आ। सो गुरु प्यारे ओ साडा बाबा पुत मरवा के सौदे दिंदा इत्थे सिरां दे सौदे हुंदे आ इत्थे आप गवाईए तां सो पाईए और कैसी चतराई इत्थे पहला आप गवाउणा पैंदा है जद जुड़ना प्रीतम प्यारे ना फिर तन कटवाउणा पैंदा है। सो तन कटवाउण वालिया ने जिदा सौदे लै सो उन्हां दा जिक्र ढाडी जत्था तुहाडे नाल।

गुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार कृपा मेहर अहमत होई है। सतगुरां दे हजूर सुंदर दीवाना अंदर आप संगतां ने रबी बाणी दी पाठ बोध सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी की कृपा सदका हुण तक आपां 988 अंक तक सतगुरु जी की पावन बाणी पढ़ी सुनी विचारी है। साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की रहमत सदका 999 अंक तक सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज 999 अंग तो मारू राग की रंभता तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा कर रहे हैं।

0: जी तेरा पाठ ते साध संग दी विश्राम दा महंगा विश्राम है। जे आपा चाल दे वेग च तुरे जाइए ते अंधा ते जाके विश्राम ला जाने आ, पर शुद्ध विश्राम जिवें ज्ञानी जी ने उचारण करके आप जी नूं दस्या है, नाम ना पाया तेरा इथे विश्राम ला के अंधा थोड़ा जा ठहरा लाउणा। अंधा भरम भूला मन मेरा, भूला पाठ ते ठमक लाउणी, पर विश्राम तेरा ते ही लाउणा। नाम ना पाया तेरा अंधा इथे विश्राम नहीं लाउणा, तेरा ते विश्राम याद रखना।
1: रहाओ साध कीते दुख पर फुड़े पूर्व लिखे माए,
0: पर बोल के फुड़े उचारण कठा ही है शब्द सारा, पर उचारण इसे तरह पर फुड़े, पर फड़े नहीं कहना, पर फुड़े जिवें उचारण किया गया।

एक सच्चा सब सेव दी तुर भाग मिलावा होए। गुरमुख मिले से न विछुड़ पावह सच सोए। एक भगती सार न जाननी मनमुख परम भुलाए। ओना विच आप वरतदा करना किछु न जाए। जिस नाल जोर ना

0: चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत हर हृदय सुमाणी जप हर हर कथा वड भागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरे नाम सुमाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन भाणी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाओ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाईए अकथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन भाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुरपुरख है पुरख मिलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वड भागी गुर सेविया हर पाया सुगड़ सुजानी मन मुख भाग विहूणिया तिन दुखे रहन विहानी
1: दुखी भोला करना हां जी।

सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वड भागी हर मन राख मिल संगत श्रद्धा उपजै गुर सबदी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर

0: डर पै तरत आकाश नखियत्रा सिर उपर अमर करारा।
1: नखियत्रा पाठ नन्ना खखी नुसियारी ऐड़ा तत्ता चरना चरारा ते कन्ना जेड़ा ये दा चिन्ह है खखे नू सिहारी ते ऐडे दे नाल उचारण होवेगा नखियत्रा जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता है डर पै धरत आकाश नखियत्रा सिर ऊपर अमर करारा।
0: आउण पाणी बै संतर डर पै इंद्र बेचारा एका निरभाओ बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुरमिल गाए गुनी रहाओ। देह तार अर देवा डर पह सिद्ध साधक डर मुया लख चौरासी मर मर जन्मे फिर जोनी जोया। राजस सातक तामस डर पह केते रूप उपाया छल बपुरी एह कौला डर पह अत डर पह धर्म राया।

एक है महा आनंद सुख पाए मारू महला पंजवा कवन थान धीरेओ है नामा कवन बस्त अहंकारा कवन चिहन सुन ऊपर छोहयो मुखते सुन कर गारा।

0: ईत आयो मान पुरख विधाता संतन की शरणाई रहाओ। काम क्रोध लोभ मोहो निवारे निवरे सगल बैराई।
1: पहला पाठ निवारे ते दूसरा निवरे है। दोवां पाठां नूं जिवें ज्ञानी जी ने विशेष ध्यान दे के उच्चारण कीता है, काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई, दोवां नूं ध्यान दे नाल उच्चारण करना जी।
0: साध हजूर हाजर है नाजर कत है ना भयो दूराई। सुख सीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई। पावन पदत किए खिन पीतर महिमा कथन न जाई। निर्भओ भय सगल भय खोए गोविंद चरण ओटाई। नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिनस लिव लाई। मारू महला पंजवा जो समर्थ सर्ब गुण नायक तिसको कबहु न गावस रे। छोड़ जाए खिन पीतर ताको वा आको फिर धावस रे। अपने प्रभ को क्यों ना समारस रे। बैरी संग रंग रस रचया तिस स्यों जियरा जारस रे। रहाओ जाके नाम सुने जम छोड़े ताकि शरण ना पावस रे। काठ दे स्याल बपुरे को ताकि ओट टिकावस रे। जिसका जास सुनत भव तरिय जिसका जास सुनत भव तरिय तास्यों रंग न लावस रे। थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकावस रे। भयो प्रसाद कृपा निध ठाकुर संत संग पात पाई। कहो नानक त्रैगुण भ्रम छूटा जो प्रभ भय सहाई। मारू महला पंजवा अंतर जामी सब विद जाने तिस्ते कहा दुलारियो। हस्त पाव चरे खिन पीतर अगन संग ले।

असाध रोग उपजियो तन भीतर टरत न काहू टारियो प्रभ बिसरत महा दुख पायो एहो नानक तत् बिचारियो मारू महला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न कोऊ आद मद अंत है सोऊ संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गहे ओ साचा सोए सुख पाया फिर

0: गुर नानक उपदेश कहत है, जो सुने सो पार परानथ मारू महला पंजवा।
1: सचे पातशाह जी ने इथे प्रतख रूप दे विच वचन कीते हन, गुर नानक उपदेश कहत है। महाराज कहिंदे हे गुरसिखो, ए गुरबाणी रूप उपदेश कह रहे हां तुहानू, जो सुने जेड़ा सुनेगा सो पार परानथ, ओ पार लंघ जावेगा इस संसार भव सागर तों।
0: मारू महला पंजवा, गुप्त करता संग सो प्रभ, दहकावै मनुखाय।
1: मनुखाय मैनू थोड़ा जा गेतर ला के, जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता है, ते नन्ने ते थोड़ा जा जोरना जोर दे के मनुखाय जिवें उचारण कीता।
0: बिसार हार जीव बिखै भोगै

0: पाठ भी जिवें अटिपी तो बिना समुंद नहीं करना, जिवें ज्ञानी जी ने उचारण किया थोड़ा जिहा कस के उचारण करना पर टिप्पी नहीं लग देनी, समुद करना समुंद नहीं कहना।
1: काम करो।

सूर मुगता शशि मुगता ब्रह्म ज्ञानी अलपाय सुभावत जैसे बैसंतर अलिपत सदा निर्मलाय जिस कर्म खुलिया।

है, पंडित पाठ शुद्ध है इथे। पिछे आपां बहुत वार पंडित डड्डे दी सिहारी दे नाल उचारण कीते हन, पढ़े भी हन, दर्शन भी कीते हन, पर इथे गरीब नवाज दियां ने डड्डे दी सिहारी तो रहत गुरु अर्जन देव महाराज जी पंडित पाठ बख्शिश कीता है। वेद पुकारै मुख ते पंडित का मा मन, का अड मा अड ते मन अड, इदा जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता है। सो ऐ पाठ का नू अगेतर ला के फिर मां नू अगेतर ला के फिर मान मन पाठ बोलना, अलग अलग उचारण जिवें कीता जांदा है। का मा मन का माठा।

मात ना को मात गर्भ मह जिन प्रत पारिया जीओ पिंड दे साज सवारिया सोई विधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत आव गुण सब टकिया चरण कमल और अंतर धारहु दिखिया बाण ते जीओ उधारहु करण पलाह।

हल्दी मिल जाए वो चीज कोई खास नहीं होती, एक रब्बी नहीं होना। कबीर कंद ने पारखो भी लपते है, ग्राहक भी लपते है, समझ भी है उसमें, लेना भी चाहता है, मुल नहीं देता, नहीं गाहक नहीं मोल। इतने कबीर को पूछिए फिर मुल की है, दस दो मुल की है। तो आप कहते ने कंचन सौ पाए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मन अपनी सोचनी, मन अपने विचार, मन अपनी चितवनी ये भेंट कर दो। मनुख के विचारां दे वासना है, हंकार है, लोभ है, ये भेंट कर दे। गुरु के विचारां दे करतार है, प्रेम है, दया है, सील है, संयम है, ये अदला बदली करनी पड़ेगी। ग्राहक की करता है, कुछ पैसे देता है, वस्तु ले लेंदा है, इत्थे अपनी मत भेंट कर ले, गुरु की मत लै जा। गुरु की मत विच ज्ञान है, तेरी मत विच अज्ञान है। गुरु की मत विच प्रेम है, तेरी मत विच घृणा है। गुरु की मत विच समदृष्टि है, तेरी मत विच वितकरण है। गुरु की मत विच भक्ति है, तेरी मत विच नास्तिकता है। गुरु की मत विच निर्वैरता है, निर्भयता है, तेरी मत विच वैर विरोध है। ये मत भेंट कर, गुरु की मत ले ले। पर गजब की गल है, मनुख कौड़ी दे के भी हीरा नहीं लेना चाहता। कौड़ी दे के भी हीरा नहीं लेना चाहता, अपनी गंदी मत दे के भी उज्जवल मत गुरु की नहीं लेना चाहता। जबकि गुरु कहता है गुरु की मत तू ले इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, परिक्षरत त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव दियो। धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की जाच ना जाए। पहले पहले बच्चा पूर्णिया ते लिखता है, पूर्णे पाने पैंदे, ये सब पूर्णे पाने ने। धन अर्पण करना, फुल अर्पण करने, वस्त्र अर्पण करने, अन्न अर्पण करना, ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। और जैसे मन अर्पण किया परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। रोज सत्संग विच आना, कथा कीर्तन सुनना, ये सिर्फ अपने आप नू तैयार करना है कि एक दिन असी अपनी मत भेंट कर दे, अपना मन भेंट कर दे। कि जिस दिन अपना मन देन नू जी करे, मत भेंट करन नू जी करे, समझ लो सत्संग का फल मिल गया, सत्संग की सफलता प्राप्त हो गई, चौली विच पै गई। ये फल है, क्योंकि अपना मन जैसे भेंट करता है मनुख, तो गुरु की मत प्राप्त होती है, तो गुरु की मत विच ही परमात्मा है। मनुख की मत विच पदार्थ ने, मनुख की सोचनी विच की है संसार है, पदार्थ ने। गुरु की सोचनी विच परमात्मा है, निरंकार है। मत भेंट की अपने ले ली गुरु की मत, उस मत द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अपनी मत देते शराब पीना है, गुरु की मत विच अमृत छकना है। अपनी मत देते दोपहर न उठना है, गुरु की मत विच अमृत वेले उठना। बस जैसे गुरु की मत आई, सारे ही दैवी गुण जो है आ जाते हैं। गुरु की मत देच ही परमात्मा है, गुरु की मत विच ही सारा अनंत परिपूर्ण परमात्मा का रस है। सतगुर रहमत करन, सत्संग करद्या करद्या साडा मन तैयार होवे, ये मन भेंट कर देना है, गुरु की मत लै लेनी है, इतने शब्द प्रवान करना। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, ओ महान हीरा, ओ महान रब्बी दौलत सानू भी प्राप्त होवे, जिसकी चर्चा जिसका जिक्र सतगुरु की जो है बाणी विच है। सारिया का हार्दिक तौर पर धन्यवाद, महापुरखों का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। ये पावन स्थान जिथे मैं देखदा वाकई छोटे छोटे बच्चों की देख रेख भी है, और बहुत सोहनी लंगर की मर्यादा भी है,
ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ।

0: लाया। बादशाह रहमत करन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बख्शिशा करन संगत चलती रहे, पंगत चलती रहे, ताकि दुनिया दियां शरीरक लोड़ां ते अध्यात्मक लोड़ां दी पूर्ति होंदी रहे। सारिआं दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद फुल चुकदी छावां। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

पूर्ण प्रेम जिहदी सारी पूर्णता आ गई परमात्मा आ गया इसनों भगती कहिंदे ने। जिस दिन मनुख भगत हो जाता है उसकी अवस्था की बन जाती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करते ने हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई प्रणवत नानक तारे सोए। साडा कोई दावा नहीं कि मैं चंगा, मेरा कोई कहना नहीं कि कोई बुरा है, कोई बुरा है। मैं चंगा हां भगत का यह दावा ही खत्म हो जाता है। कोई बुरा है ऐसा भगत का कहना ही खत्म हो जाता है। ये भगत की पहचान और हकीकत है। परमात्मा की दृष्टि च कोई बुरा भला नहीं है। गन्ने विच रस पा दिता है परमात्मा ने, अमृत है। संतरे का रस, अंगूरां का रस अमृत है। और इस अमृत नूं मनुख चाहे तो जहर बना सकता है, शराब बना लेगी। रस ते मिठा सी, अंगूरां का कौड़ा हो गया। रस ते स्वादिष्ट सी, मिठा सी, संतरे का कौड़ा हो गया। रस ते मिठा सी, गन्ने का कौड़ा हो गया। मिठे नूं मनुख कौड़ा कर सकता है, अमृत नूं मनुख जहर बना सकता है। मनुख कोल ए तौफीक है। शराब नूं ही देख लो, मनुख ने मिठे नूं कौड़ा कर दिता है त्रका के। ते जे अमृत नूं मनुख जहर बना सकता है तो मनुख दे कोल एक तौफीक है जहर नूं भी अमृत बना सकता है। संखिया जहर ही आउंदी है। हकीम वैद इनू मार के इसका कुश्ता बना लेंदे ने, अमृत हो गई, अमृत हो गई। इकबाल इसनू बड़े सोहने ढंग नाल बयान करदे ने, जो जहरे हला हल है वही अमृत है नादा। मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के, इति पीण दा ढंग है। जे तेनू आ जाए अमृत है, जे पीण दा ढंग नहीं आया तो जहर है। जे जीण दा ढंग आ गया तो जिंदगी अमृत है, जे जीण दा ढंग नहीं आया तो जिंदगी ही जहर है। जे रहण दा तैनूं ढंग आ गया सारा संसार अमृत है, निरंकार दा रूप है। जे तैनूं रहण दा ढंग नहीं आया सारा संसार जहर है। कि तेरे ते मुनसर है, तू जहर दे च जीवना है कि अमृत दे च जीवना। सतसंग इस वास्ते है, और आज तक बड़े बड़े अवतारी पुरुष महज इसलिए आए कि मनुख चुनाव ठीक कर सके, मनुख चोन ठीक कर सके। अक्सर मनुख चुनाव गलत कर लेंदा है, जिंदगी सारी गलत हो जाती है। जितने जिंदगी दे तारीखी होवेगी अज्ञान होवेगा उतनी ही जिंदगी जहरीली बन जाएगी। फिर तारीख मनुख दा संबंध भी तारीखी नाल हुंदा है, रात नाल हुंदा है। अमृत वेले सुत्ता रह जाएगा, रात दी तारीखी नूं उज्जवल करके जुए खाने च बैठा होवेगा, वैश्याले च बैठा होगा। मंदरां दी रौनक ते खत्म हो गई, जुए खानियां दी रौनक वध गई। मंदर उसनू कहिंदे ने जिसदा द्वार सवेरे खुलदा है, अमृत वेले खुलदा है। जिथे सवेरे घड़ियाल वजदा है, जिथे सवेरे गुरबाणी दी गूंज उठदी है, उते बेशतर जगह उंजी बंद हो गई।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: कई कोट पार ब्रह्म के दास
1: जिनहो वत्या तन प्रगास
0: कई कोट तत्व के देते
1: सदन हर एको नेत्रे
0: कई कोट नाम रस पीव है
1: अमर भय सर सद ही जीव है
0: कई कोट नाम गुण गाव है
1: अतो रस सुख सह समावे
0: अपने जन को साथ साथ संभारी
1: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक
0: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई
1: नानक तिस बलहार ने जल थल मैल सोए अष्टपदी
0: कर्ण करावन करने जोग
1: जोत सुभावे सोई होग
0: फिर मैं ताप उताप नहारा
1: अंत नहीं किस पारा वारा
0: हुक्मे धार अधार रहावे
1: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
0: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार
1: हुक्मे अनेक रंग प्रकार
0: कर कर देखे अपनी वडियाई
1: नानक सब में रहा समाई
0: रब भावे मानो गत पावे
1: रब भावे ता पात्र त्रावे
0: रब भावे बिन सास ते रखे
1: रब भावे ता हर गुण पाखे
0: रब भावे ता पत उधार
1: आप करे अपन विचार
0: दोहा श्रिया का आप स्वामी
1: खेले से अंतर जामी
0: जो भावे सो कार करावे
1: नानक दृष्टि और न आवे
0: ओ मनुख ते क्या होए आवे
1: जोत सुभावे सोई करावे
0: किसके हाथ होए ता सब पिछले
1: जोत सुभावे सोई करे
0: मन जानत विखिया मह रचे
1: जे जानते अपने आप बचे
0: धर्मे भूला दह दिस धावे
1: नमक माही चार कुंठ फिर आवे
0: कर कृपा जिस अपनी भक्त दे
1: नानक ते जन नाम मिले
0: छिनवे नीच कीट को राज
1: बार ब्रह्म गरीब नवाज
0: जाका दृष्ट कछु न आवे
1: जिस तत्काल दह दिस प्रगटावे
0: जाको अपनी करे बख्शीस
1: ताका लेखा न गण जगदीश
0: जियो पिंड सब तिसकी रास
1: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
0: अपनी बनत आप बनाई
1: नानक जीव देख बढ़ाई
0: इसका बल ना ही सहात
1: कर्ण करावन सर्व को नाथ
0: आज्ञाकारी बपरा जियो
1: जोत सुभाव सोई फन थी
0: अब हूँ ऊंच नीच मैं बस
1: अब हूँ सोग हर करंग हस है
0: अब हूँ निंद चिंद व्यवहार
1: अब हूँ उबक आस प्याल
0: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार
1: नानक आप मिलावन हार
0: अब हूँ नृत करे बहुभांत
1: अब हूँ सोए रहे दिन रात
0: अब हूँ महा क्रोध विकराल
1: अब हूँ सर्व की होतर वाल
0: अब हूँ होए वह बड़ राजा
1: कभ भिखारी नीच का साजा
0: कभ अब कीर्त में आवे
1: कभ पला पला कहावे
0: जो प्रभु राखे ते भी रहे
1: वर प्रसाद नानक सच कहे
0: कभ होए पंडित करे बख्यान
1: कभ मोहन तारी लावे ध्यान
0: कभ तट तीर्थ स्नान
1: कभ सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कभ पीठ हस्त पतंग होए दिया
1: अनक जोन परमे परमिया
0: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे
1: जो प्रभु भावे तिवे न चावे
0: जो भावे सोई होए
1: नानक दूजा अवर न कोए
0: कभ साध संगते पावे
1: उस स्थान ते बौर न आवे
0: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
1: उस स्थान का नहीं विनाश
0: मन तन नाम रते एक रंग
1: सदा बसै पार ब्रह्म के संग
0: ज्यों जल मह जल आए कटाना
1: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना
0: मिट गए गबन पाए विश्राम
1: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक
0: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले
1: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
0: जिसके अंतर राज अभिमान
1: सो नरक पाती होवत स्वान
0: जो जान है मैं जो बनवंत
1: सो होवत विष्टा का जंत
0: पाप को कर्मवंत कहावे
1: जन्म मरे भो जोन परमावे
0: धन भूम का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानकी है मुक्ति अगै सुख पावे
0: धनवंता होए कर गर्भावे
1: तरण समान का संग न जावे
0: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
1: और भीतरता का होए विनाश
0: सत्य आप जाने बलवंत
1: होए जाए पसमंत
0: सेना बदे आप अहंकारी
1: धर्म राय तिस करे खुआरी
0: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
1: सोजन नानक दरगह परवान
0: कोट कर्म करे हो तारी
1: शरम पावे सगले बरथारे
0: अनक तपस्या करे अहंकार
1: नरक स्वर्ग फिर अवतार
0: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: हर दरगह को कैसे गवे
0: आप को जो भला कहावे
1: इसे भलाई निकट न आवे
0: सर्व की रेन जा का मन होए
1: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझ ते कश होए
1: जब इस को सुख नाही कोए
0: जब यह जाने मैं किस करता
1: तब लग गर्भ मैं फिरता
0: जब धारे को बैरी मीत
1: जब लग नेचर नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: रब कृपा ते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक हो छुटे
0: सहस कटे लग को उठतावे
1: रतन आवे माया पाछे पावे
0: अनक भोग विखिया के करे
1: नै तृपतावे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजै
1: सपन मनोरथ फिर थे सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: प्रभागी किसे प्राप्त होए
0: कर्ण करावन आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: कर्ण करावन करने हार
1: इसके हाथ कहा विचार
0: ऐसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप आप्रम सोए
0: जो किश पीनो सो अपना रंग
1: सब ते दूर सब हूँ कै संग
0: दूजा देखे करे विवेक
1: आपे एका पै अनेक
0: मरे न बिनसे आवे न जाए
1: नानक सब ही रह समाए
0: आप उपदेशे समझे आप
1: आपे रचिया सबके साथ
0: आप कीनो अपन विस्तार
1: सब कुछ उसका हो करने हार
0: पुस्ते पिन कहो किश होए
1: अंत नंतर एक सोए
0: अपने चलित आप करने हार
1: गौत करे रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नानक कीमत ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ।
0: ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ
0: ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਕੀਨਾ
1: ਕੋਟ ਮਦੈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚੀਨਾ
0: ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ
1: ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੁਰੂਪ
0: ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ
1: ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰਵਣ ਵਖਿਆਣੀ।

0: प्रीत सलोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन हार जा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो ही मलीन
0: संत का दुखन शोभा दे ही न
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग जो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा मह जले
0: संत का दुखन सब को छले
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत पावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख में दुख
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरह
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ
0: नानक संत पावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान परमाइये
0: संत का दुखी उजड़ पाइये
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत पावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इं बिल लाए
0: ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं तरापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: ज्यो बुआड़ तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दिक्का तुर ही पया
0: नानक जो भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न त्रिष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सात को नमस्कार
1: रबी उसत कर हो दिन रात
0: तिसे त्याहो सास ग्रास
1: सब कछ वर्ते तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तज हो सियान पुसुर जन हो सिमर हो हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी
1: मनुख की टेक बिरथी सब जान
0: जीवन पौ एक है भगवान
1: जिसके दिया रह अगाहे
0: पौ न तृष्णा लग गया
1: मारे रख एको आप
0: मानक कक्षना ही हाथ
1: जिसका हुक्म भू सुख होए
0: जिसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
0: नानक बिघन न लागे कोए
1: उसत मन में कर निरंकार
0: कर मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
0: सदा सहेला कर ले जियो
1: नैनो बेग ठाकुर का रंग
0: सदा संग बिन सह सब संग
1: चलो मार्ग गोविंद
0: पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा
0: आदर गया नानक उजल मथा
1: बड़ भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
0: चेतन मंतक नहीं संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछान
0: तुत कियो सोजी जान
1: नाम संग जिसका मन मानिया
0: नानक तने निरंजन जाने
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजय
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: सात संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
1: अन दिन कीर्तन केवल बखयान
0: मैं सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: जिसकी कटिए जन की फसा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक से न लगे दुख
1: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे
0: सो संत सोहेला नहीं बुलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किसते डरे
1: जैसा सत ऐसा दृष्टाया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सोदत सोदत सीजया
0: प्रसाद तत् सब पूजे
1: जब देखो तब सब शमूल
0: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल
1: मैं किस जन मैं नहीं किस मरे
0: अपने चलते आप ही करे
1: आपन जावन दृष्ट अन दृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट
1: आपे आप सगल में आप
0: अनंत युग तरच था व्यथा
1: अवनाशी ना ही किस खंड
0: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड
1: लख पे पुरख प्रताप
0: आप जपाए तन नानक जाप
1: जिन प्रभु जाता सो सो पावंत
0: सगल संसार उदर तन मंत
1: प्रभु के सेवक सगल उदार
0: प्रभु के सेवक दुख विसारण
1: आपे मेल लय कृपाल
0: गुर का शब्द जप भय निहाल
1: उनकी सेवा सो ही लागे
0: जिसनो कृपा करे बट भागे
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान
1: जो किस करे सो प्रभु के रंग
0: सदा सताप सह हर संग
1: भाई हो वैसो हो
0: करने हार पछाने सोए
1: जब का किया जन मीठ लगाना
0: जैसा सत ऐसा दृष्टाना
1: जिसकी उपजे तिस माही समाये
0: सुख निदान उन्हों बने आए।

नहीं जा सकेगा, कंते थे रह जाएगा। निरंकार दे दे साडा मन जा सकता है, साडा मन जा सकता है। कारण ये मन आया भी सीधा सीधे रूप दे निरंकार तो आया। इस वास्ते गुरबाणी कहती है तन ते मिट्टी, ये मिट्टी इत्थे रह जाएगी। मन जोत है, ये जोत दिच जोत हो सकता है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछा। मन सूक्ष्म शरीर है, इनरल बॉडी है, शरीर दे अंदर एक सूक्ष्म शरीर। कई पुरुष इस ढंग नाल भी जींदे ने और इतनी उच्ची जिंदगी बतीत करते ने। वक्ती तौर ते सूक्ष्म शरीर का संबंध अस्थूल शरीर नाल तोड़ भी देंदे ने, कुछ दिनों लई, कुछ घंटियां लई, कुछ समय लई। सनातन जग दे महान जगत गुरु शंकराचार्य एक महीने अपने शरीर चो निकल गए। इन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर जिन्हों जोत कहिंदे ने, मन कहिंदे ने, कढ दिता। चेलियां नूं कहा इस शरीर की रक्षा करने, मैं एक महीने बाद आवांगा। पिछोकड़ सारी गाथा ना सुनावा, ये राम राय भी कर लेंदे सन, धन गुरु हर राय साहब जी दे साहिबजादे। अपनी पत्नी नूं कहा मैं 7 दिन बाद आवांगा, मैं होर मंडलां दे जाना है। मेरी देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें। राम राय मसंदा नूं मौका मिल गया, राम राय दी देही नूं अग ला दईए ते आपां खुद गुरु बणे। ए विचकार रोड है, इनू हटाओ। अर्थी सजा ली, अर्थी कढ़न लगे। राम राय दी पत्नी जारो जार रोंदी है, दुष्टो एक हफ्ता तो उड़ीक करो, अज ते 3 दिन हुए ने। मैनू कह गए ने 7 दिन बाद मैं आवांगा, उड़ीक करो। नहीं, ये मर गए ने, ये मर गए। बड़े उसने तरले पाए, बड़े उसने रुदन कीता, मसंदा दी ताकत ले गए शमशान घाट, अग ला दिती, अद्धा शरीर जल गया। राम राय दा सूक्ष्म शरीर आया। पर पिंजरा जल चुकिया सी, घर जल चुकिया सी, घर रहने दे लायक नहीं रहा सी। फिर भी उस सूक्ष्म शरीर ने अस्थूल शरीर दे प्रवेश करने दी पूरी कोशिश की थी। अग उस सूक्ष्म शरीर नो नहीं साड़दी, पानी नहीं डोबदा। उस शरीर देच प्रवेश करके राम राय उच्ची आवाज देच बोले, दुष्टो मसंदो, तुसी मैनु जिंदा साड़िया है, गुरु थानू जिंदा साड़ेगा। तुसी मैनु जिंदा जला देता है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां सारिआं मसंदां नूं देहरादून विच जिंदा जलाया गया। इस तरह दी अनेकां घटनावां ने। आपां जितने बैठे ने इतने सतसंग विच सूक्ष्म शरीर होणगे, इतने होणगे। किहड़े सूक्ष्म शरीर? प्रथम ते उह सिद्ध पुरश जो इस अस्थूल देही दे किधरे भी होन, कि किसे सत्संग नूं मन भावदा उह देख लैन दूरों, ते इस शरीर नाल पहुंचना बड़ा औखा होवे, सूक्ष्म शरीर कढ लैंदे ने पहुंच जांदे। प्रथम। दूसरा, जिन्हां दी मौत हो गई, शरीर दी मौत हो गई, इहदी मौत एडे ढेरी हो जांदा, मिट्टी हो जांदा, सूक्ष्म शरीर ना जलाया जांदा ना ढेर ढेरी होंदा। आम हालात विच शरीर दी मृत्यु तो बाद सूक्ष्म शरीर 13 दिनां दे अंदर किधरे ना किधरे गर्भ विच प्रवेश कर जांदा है।

0: तलावा ऐसा तकिया,
1: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया,
0: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया,
1: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया।

नानक ने हट खोलिया, नानक ने हट खोलिया, सौदा रहनगे नसीबा वाले। गुरु प्यारियो, गुरु बाबे नानक दा हट जिहड़ा उदों खोलिया होया सी ना 550 साल पहला, वो अज भी हट खुला होया, पर साडिया नजरां दे कोलों पहचान ना होया। जेड़े इस गुरु नानक दी हट्टी तो सौदा लै गए, वो फिर गुरु वर्गे बन गए। बाबा लैणा जी सौदा लैण आए सी गुरु बाबे नानक दी हट्टी तो, ते सतगुरु महाराज जी दे दर्शन करके वो गुरु बाबे दा रूप बन जांदा, लैणे तो अंगद बन जांदा। जिन्हां ने सौदा लिया उन्हां ने अपने सिर जाके आर्यां दे डाड़ा ते उन्हां ने दस दस के बंद कटवा लै, उन्हां ने सने केसां दे खोपरियां उतार लिया, जिन्हां ने गुरु बाबे नानक दी सौदा हट्टी तो सौदा लिया। अज सिख सतगुरां दे पासों जदों सौदा लैण जांदा है ना, अपनी मर्जी का सौदा भालदा, बाबा नानक तेरी मर्जी का नहीं, मेरी मर्जी का सौदा। ते सा संगत जी भेजे बाबा नानक ना कर दवे भाई नहीं सजना, इत्थे सच का व्यापार हुंदा, सच का सौदा मिलदा। ते अज सिख भी इदां दा हो गया, कहिंदा बाबा भाई होर हट्टी भाल लैने आ, इत्थे किते हट्टियां दा घाटा, बथेरे ठग तुरे फिरदे आ हट्टियां ला ला के सिक्खी दे भेस दे विच, आपां होर कोई बाबा लभ लैने आ। सो गुरु प्यारिओ, साडा बाबा पुत मरवा के सौदे दिंदा, इत्थे सिरां दे सौदे हुंदे आ, इत्थे आप गवाईए तां सो पाईए और कैसी चतराई, इत्थे पहला आप गवाउणा पैंदा है, जद जुड़ना प्रीतम प्यारे ना फिर तन कटवाउणा पैंदा है। सो तन कटवाउण वालिआं ने जिद्दां सौदे लै, सो उहनां दा जिक्र ढाडी जत्था तुहाडे

0: खेमे छत्र च सराय चे दिसन रथ पीड़े।
1: सराय चे जिवे ज्ञानी जी ने उचारण किया है, सराय चे थोड़ा जा लमका के इसे तरह उचारण करना जी। हांजी,

0: जाल नेत हेथे जमक ना वस्त अली आल अलीयल पाठ सरूपां दे विच कठा छापिया है पर साध संगत जी अलग अलग पाठ पढ़ना जिवें ग्यानी जी ने उचारना लिखती रूप भी पदछेदां दे विच संपर्दा दे विच अलग अलग पढ़ाया जांदा ते अगला शब्द है मेर चा चागुण चचा जिहड़ा है पहला ओनू अलग कर लेना ते दूजा जिहड़ा चागुण पाठ है ओदा चचागुण पाठ सरूपां दे विच छपिया है पर संपर्दा दे विच चा चागुण रे एदा पाठ जिवें ग्यानी जी ने उचारण कीता है बास जाल नेत ना वस्त अली आल मेर चा चागुण रे एदा जिवें उचारण सरवण कीता है इसे तरह ही करना जी
1: चंद कमुदनी दूरह निवसास अनपाओ कारण रे
0: ते कुमदनी पाठ पोला ही करना कुमदनी नहीं करना कक्के दी भी औंकड़ है ममे दी भी औंकड़ है ते एथे होर किसी अखर ते जोर नहीं देना चंद कुमुदनी दूरह निवसस

0: हाथ काज छोड़ तौ अपियो पीजै मीन की चापल सो जुगत मान राखी है उड्डै नह हंस नह कंध छीजै भणत नानक जनो रवै जे हर मनो मन पवन सो अमृत पीजै मीन की चापल सो जुगत मान राखी है उड्डै नह हंस नह कंध छीजै मारू महला पहला।
1: इस शब्द दे विच जो चापल शब्द आया है पद आया है ते इनू ज्ञानी जी ने तीन चार वार पोला ही उचारण किया इसे तरह पोला उचारण करना है।

0: पिछले गुनह बख्साए जीओ आब तू मार्ग पाए।
1: गुनह पाठ भारा करना पोला गुनह नहीं, गुनह कहांगे ते गुण गुणा दी गल होवेगी। गुनह दा मतलब है गुनाह, जेड़े गलतियां। पिछले गुनह बख्साए जीओ अब तू मार्ग पाए।
0: हार की

मात पाव माता पिता बनेता शुद्ध पाठ किया भुजंग सिंह ने गुरु की कृपा आम तौर पर बेनता नहीं पाठ करते बनता बनता पाठ नहीं ससे बनेता नन्ने सही थोड़ी जी आवाज आनी है बनेता का भाव घर वाली स्त्री स्वत पुत्र बंधप रिश्तेदार इष्ट प्यारे मीत मित्र अर अते भाई भरा ये जिन्हें भी रिश्तेदार

0: आवाज की सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं ओंकार आद कथने अना, ओ नाद से ओंकार, ये जिवें घंटे की आवाज आती है मारिए तो आहिस्ता आहिस्ता बंद आती है, आहिस्ता आहिस्ता धीमी पै जाती है। ये आवाज अज तक धीमी नहीं पई, धीमी हो गई, एकदम धमाका होके चल रही है, ब्रह्मंड दे च व्यापक है। ओंकार आद कथनी अनाद, ये अनादि कथनी है, पहला बोल है, ये पहले तो भी पहला बोल है, आद पहला बोल है, इस तो पहले आवाज दी दुनिया नहीं सी, ये पहली आवाज है ब्रह्मंड दी। इसे नु गुरु जो है नानक देव जी महाराज फरमान पहले इंज कर देने, कीता पसाओ एको कवाओ, एक कवाओ एक आवाज, तिस्ते होए लख दरिया, उसे कवाओ तो उसे ही आवाज तो लखा जिंदगी दे दरिया चल पे, ते जिंदगी दा दरिया की है सूरज, उसे एक धमाके तो अरबां खरबां सूरज बन गए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े होए, ए जमीन उस सूरज दा टुकड़ा, अनंत काल तक ए अग दा गोला ही सी, पूरी ठंडी अज भी नहीं हुई, ए भी मैं अर्ज करते हैं, अजे भी लावे चल देने, अजे भी किधरे किधरे लावे फुट देने। अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण न गगना हुक्म अपारा, ना दिल रहन चंद न सूरज सुनने सुन समाए, इस सनाटे देच जो आवाज होई कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ, वो कवाओ की सी, वो हुण गुरु नानक देव जी महाराज लंबी चौड़ी बाणी च दसदे ने, उस बाणी दा नां है ओंकार, रामकली राग दे च है, उन्हों दक्कणी ओंकार करके कहिंदे ने, इस वास्ते रामकली दक्कणी, रामकली पूर्व दी नहीं गायन करने, दक्षिण दी खो गई गल। गुरु ग्रंथ साहब दे दो तरह दा संगीत है, दक्षिण भारत दा पूर्वी भारत दा, रामकली दक्कणी, दक्कणी ओंकार बाणी दा नां ही ओंकार है, जिवें पहली बाणी दा नां जप है, सत्कार वजो असी जपजी साहब कहिंदे आ, बाणी दा नां ओंकार है, ये इस तरह शुरू होती है, ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिनचित, ओंकार सैल जुगवाय, ओंकार वेद निर्मय, ये बाणी किथे उचारण की थी, भारत दे इक तीरथ है, उस तीरथ का नाम है ओंकार, इंदौर तो 40 मील दूरी थे, बाई रोड जो हजूर साहब जाते हैं दिल्ली तो उन्होंने रस्ते च पै जाता है, रेलवे स्टेशन का नाम है ओंकार, शहर का नाम है ओंकार, मंदिर का नाम है ओंकार, आ सारे कदीमा दे माहिरीम जो भारत सरकार दे ने, वो कहिंदे ने मंदिर घट तो घट 4000 साल पुराना है, पहाड़ नू तराश के बनाया गया है, बिल्कुल नर्मदा दे किनारे, नर्मदा उसनू टच करके लंघदी है, छू के लंघदी है, उस मंदिर का नाम है ओंकार, उसे ही मंदिर तो 100 गज की दूरी ते है गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी का, उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा ओंकार, मंदिर का नाम है ओंकार, शहर का नाम है ओंकार, रेलवे स्टेशन का नाम है ओंकार, 100 गज की दूरी ते जिथे गुरुद्वारा है, यह ब्राह्मणा की टकसाल सी, ते वेद शास्त्र पढ़ाए जाते सन, इत्थे ही दक्कणी ओंकार सतगुर ने उचारण की, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, रिख नाम नाम गुरमुख गोपाला, ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जनचित, तू जिसनु ओंकार कहना पे है, नहीं है ओंकार तो सारा ब्रह्मंड होया, वो पहली आवाज की सी ओंकार। स्वामी महावीर जैन धर्म दे बानी, वो भी कहते हैं पहली आवाज ओंकार है, उसे तो ब्रह्मंड होया। इस्लाम ते ईसाइयत भी मनती है, सारा पसारा शब्द तो होया, पर शब्द की रूपरेखा होर दसते ने, मुहम्मद साहब कहते ने शब्द कुन है, और ईसा कहते ने लोगोस है, लेकिन भारत दे करीबन करीबन तमाम ऋषि मुनि गुरु पीर पैगंबर ते भगत कहिंदे ने ओ धुन है ओ अंकार। फिर सतगुरु ते एका लांदे ने होर दूजी धुन नहीं है। कारण उपनिषदां दे अधे ऋषि कहिंदे ने ओ धुन ओ अंकार है, पर अधे कहिंदे ने ओम है ओम, वो कहिंदे ने ए धुनी होई, अधे कहिंदे ने ओ अंकार है। महाराज ने एक का ला दिता नहीं है, और कोई धुन नहीं, एक ओ अंकार, एक यही धुन है, यही धुन है ओ अंकार आद। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जाप साहब, ओ अंकार आद कथने अनाद, इस ओ अंकार दी धुन तो फिर किवें पसारा होया, अरबा खरबा सूरज पैदा होए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े होए, ये जमीन सूरज का टुकड़ा है, ये फिर पसारा किवें होया। गुरबाणी जिस तरह खुलासा कर दिए, मैं फिर कल दिन नो थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। मैं सुस्त रह जाना, घड़ी अगे लंघ जाती है, फिर मैनू रुकना पैंदा, तो समा हो गया। बाकी विचारा मैं कल थोड़े सामने खोलण दी निमाणी जो है कोशिश करांगा। सतगुर मैनू समर्था भी दे देन, सूझ भी दे देन, समझ भी दे देन कि ये जिहड़ा प्रकरण वालबन 10 तरीक नू मैं आरंभ कीता सी थोड़े सामने बयान कर सकां। प्रकरण की संपूर्णता नहीं, गुरु नानक दे शब्द की संपूर्णता नहीं, मेरे समय की संपूर्णता है, मेरे कथन शक्ति की संपूर्णता है, मेरे जैसे ज्ञानी करोड़ा भी पैदा हो जान, गुरु नानक का शब्द नहीं समाप्त होता, उदी विचार नहीं समाप्त होंगे, उदे ख्याल नहीं समाप्त होंगे। बाकी मैं कल थोड़े सामने खुलासा करन दी निमाणी कोशिश करांगा। उस तो बाद एक हफ्ता दास ने लौंगा ही लैंड के गुरुद्वारे प्लेन व्यू ने जो है उत्थे कथा करनी है सवेरे शाम, दो दिन थोड़े नेड़े, दूसरा स्थान 118-29 थी, दो दिन दास ने उत्थे हाजरी भर के फिर इंग्लैंड चले जाना।
1: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
2: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचदे करने ने, जे रुपये बाफर हो गए तां डॉलर इत्थे पहुंचने करने ने, तां गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो। 604-349-1313 यूनिट 103-8840-120 स्ट्रीट सरी, 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स, दावा ते वादा पक्का।

पाए संबत सत्रह सहस पण ज अर्ध सहस फुन तीन कह ज भाद्रव सुधि अष्टमी रावारा तीर स्पद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र पख्यान त्रया चरित्र मंत्री भूप संवाद चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त सुभ मस्त अफजो दोहारा दास जान कर दास पर की जा कृपा पार पाथ दा राख मोहे मन क्रम बचन बचार चापै मैं नगन से प्रथम नाओ किसन बिसन कब हुन त्याहूं कार सुन पहचान तेन सो लिव लागी मोरी पग एन सो महाकाल रखवार हमारो महा लोह मैं किंकर था।